0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सुपर कूल स्टाइल सारदा साड़ेयोड़ा समर फुला कूल
2: जिल जिल सम्मा कुल कुल शॉपिंग तिरची सारदास।